मन रापे सोग अगन तिस जन ना व्यापे सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर तन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदारन आवे नेड़े तृष्णा अगन प्रभ आप बजाई नानक उदरे प्रभ शरण आई तृष्णा अगन प्रभ आप बजाई नानक उदरे प्रभ शरण आई सो कहो टल गुर सेवियै एनिस सहज स्वभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत समदी नूर अरसों कुरसों झटियै तुर डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहू जिस पास बैठे आ सो ही है सबना दा बसाहू। वाहिगुरु जी एक ओंकार सत नाम

ए मन इटी हाथ करो फुन, नेत्रो नींद न आवे, रथना नाम जपो तब मतिये, एन वेद अमृत पावो। मन संपट जित सत सर नावन, भावन पाती तृप्त करे, पूजा प्राण सेवक जे सेवै, एन वेद साहेब तरावत रहै।

0: नानक जन जापै हौसला ही सच्चा सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी साहिब गुरप्रसाद। राग सूही महला पहला चौप दे घर पहला भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। दूध कर्म फुन सुरत समायण हुए नरास जमावो। जपो तो एको नामा अबर निराफल कामा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी साहिब गुरप्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लख बार
1: भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पूरियां भार।

कथ न कथिन आवे तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट। हुक्मे हुक्म चलाहे राहु, नानक बिगते बे

साहिब जीओ बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ वड़े भाग भेटे गुरुदेवा कोट प्राद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सो अगन तिस जन

कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अंदिन जागै, प्रभु कै सिमरन भाव न व्यापै, प्रभु कै सिमरन।

प्रभु को सिमरे से तनवंती, प्रभु को सिमरे से पतवंती, प्रभु को सिमरे से जन प्रवाण, प्रभु को सिमरे से पुरुख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोताजी, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजी, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्लाह, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु को सिमरे से पारे उपकारी, प्रभु को सिमरे तन सत बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तने अणद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसे अरनेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु के सिमरन कबूणा चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल बिगासन, प्रभु के सिमरन अनाद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरे से जन जन को प्रभु मैया, नानक तिन जन शरणी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भी दुपाए, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौंकुंट जाते, हर सिमरन धारे सब धरना।

छोड़ झूठ संग मचा जो छोड़ नसु अस्त्र कर मानना जो उन सदूर पर आना है। छोड़ जाए तुसका शर्म कराया संग साहित उस पर हरा चंदन लेप उतारा तो हे गत प्रीत पसम संग हो अंधकूप में पत बिकराल नान कर देव प्रभ दयाल कर दूत पशु की मानस याद लोग पिजारा कर दिन रात बार पेक अंतर मल माया शब्द नहीं कश कराया छुपाया। बाहर ज्ञान त्यान शिनान अंतर व्यापै लोभ सवान अंतर अगन बार तन सुहा गल भद्र कैसे तरे अथा जाके अंतर बसे प्रभाप नानक तेजन सहज सुमात। सुनन दा कैसे मार्ग पावै करके लियो उड़ने बहावै काम बुजार तबूजे डोरा निस्के तो समझे भोरा काम बिसंपत गावै गुंग जतन करे तो पिसुर भंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आस गवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सुहाई सुहावे नचीत जो बैराई दस्यो प्रीत बल हुआ क्या करे पितर बसंत केल माया रंग रस सदड़ करमा ने मने प्रतीत काल ना वे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार मां लोभ त्रो या हूं जुगत बयान ने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकर तुम पै अरदास जी अपन सब तेरी रास तुम मत पिता अंबारक तेरी तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे होय न जाने तुम रायन तू चे दे उचा भगवंत सल समगरी तुम रह सूत्र धारी तुम त्यो सुहाग्याकारी तुम रीगत में तुम्हें जानी ना।

आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञान के सकल मन माह है, ब्रह्म ज्ञान का कौन जाना भेद, ब्रह्म ज्ञान की सदा देश, ब्रह्म ज्ञान का कथे न जाय धाकर, ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञान की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञान की गत ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञान के अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ।

मानव की टेकवृत्ति सब जान दे उनको एक भगवान जिस कह दिए रहेगा ए भवन तुझे नला के आए मारे राके को आ मानव के सुनाई हाथ तिसका हुक्म बो सुखोए तिसका नाम रखंड प्रोए सिमर सिमर सिमर प्रसोए नानक को नला के को उस्तत मन में करन कार कर्म न मेरे सदव्यहार निर्मल स्नामृत पियो सदा सोए ला करल जियो नैनो पे ठाकुर कालंग सा संग दिन से सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपी अरबिंद कर हर करण सरण हर कथा हर दरगे नानक उजल मता बड़भा कीते जन जग मा सदा सार करण गाय राम नाम जो करे विचार से तनवंत कनी संसार मन तन मुख बुलैर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पैसाने ते सुखी सो जे जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिन्ने निरंजन जाने गुरप्रसाद अपने आप सूझे तिसकी जानो तिस न बूझे सात संग हर हर जस कहत सर्वलोक त्योहार जन लयत अन दिन कीर्तन करो ख्यान के समय सोए निर्वाण एक उपर जिस जन की आसा तिसकी कटी है जम की भाषा पार पुन किस मन भोग नानक तिन लागे दो जिसको आप मन चित आए सो सन सोए लाने बुलावे जिस पर अपना कृपा करे सो सहे को किस ते डरे जैसा सत सदिष्टावनी कर तुम्हें आप समाय सोध सोध सोध सीधिया गुर प्रसाद सब बुझे जाओ देखो तब सब कुछ बोल नानक सो सुख सो सोल ना कि जन्म न कि मरे आपन चलते आप ही करे आम जाम दिष्ट अंदिष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अणक जुग रहे थाप थाप अविनाशी नाई किस खंड धारण तारे ब्रह्मांड है अलख पे पुर प्रताप आप जपाय तनक जाप जिन प्रभु जाता सो सो बावन सकल संसार उतरे तिन मंत प्रभु के सेवक सब उदाहरण प्रभु के सेवक दुख सारण आपे मेले कृपाल गुर का शब जप निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत भाव विश्राम नानक तिन प्रभु को उत्तम कर मान जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा साहब सह संग सह सुभाए होए सोए करण यार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मील लगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिस दे उदय तिस माय समाए सुख

एक सिमरनाम धार उपास स्वामी विचारो चरण करो करण कर्ण सुब्र सुमरा दृढ़ कर गौ नाम हरवाते तन संचो भगवान समझना कर निर्मल मंत्र एक आसरा कुमन माय सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंड उड़ता है सो तन से वाते पावे जिस को नित बाचा में सो सुख साधु संकृत जिस उबा को करे पड़ी करनी सो सो बजर की शरणी अनुपावी रोग न जाए रोग मुड़े रोग तलाए सर्वधान में हर नाम धान जपना कर गई प्रवान मन प्रबुद्ध हर के नाए दा जिस तावते आवे टाए ता को विघ्न लागे कोय जाकर देव से सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर समय सदा सुख भाव पवन से पूर्ण व्यास भगत पाया तुम प्रकाश कर जाए बसे अपना सी को नाल कटी जम फासी तत् विचार कह दिन साचा जन मरे सोका चोका चाव अकुण मिटे प्रभ से व्याप ते अक्षण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण धारण पवन झूठ नारे सिमर सास विचार हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नाम खुल पाए संग न चाल स्थिर इतना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब बंता इनते कौन तू कौन सनाता राज रंग मा विस्तार इनते कहो कौन छुटकारा सब सिर हथ सुवारी झूठा डम झूठ पा सारी जीन दे तुस भजन भगाना नाम विसार नानक विस्ताना गुर की मातु ले आने भगत बनाओ बुडू बे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो ची चरण कमला कुमण माए जन्म जन्म कह कर हो जाए आप जपो अवरण हम जपाओ सुनत कह त्रैत कद पाओ सात गुरु सर कुण आओ सह सुबह नान गुण गाओ त्रे तर समायल बिन जाए मेरी फैल हो चंद विसे सुखनाल सात ग्रह सर नाम संभाल छाड़ सियाण सगली मन सात संग पावे सजदना हर पुंजी संस करो ब्याई सुख दर कर जर नकार सर निरंतर कुल देख कहो नानक जाके मैं सगले एको जाप एको साला एक सिमर एक मन आए कसके गुण गाओ आनंद मंतन जाप एक भगवान देखो एक प्यारा पूर्ण पूर प्रव्या अनुसार एक ते पाए एक रात प्राचित गए मंत्र मंत्र एक प्रभाता गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोक है फिर प्रमे आया पर या तो शरण आए नानक की प्रभेंती अपनी भक्ति लाए अष्टपदे जाचक दिन जाचे प्रवतारण कर कृपा देव हर नाम साधना की मांगो तो कृपा परमेश्वर दा पूर सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास प्रभु तुम ध्यान चरण कम सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओटे को आधार नानक मंग के नाम प्रसार प्रभु की दुष्मा सुगोय अर्सपा बिरला कोय जिनचा कैसे जंत्र उताने पूर्ण पुरुष ने डुला ने सुब्र परे प्रेम रस रंग जय चाओ साध के संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगा संदन विला गुड़ बाकी जी पै प्रो सोय नानक नाम तिस कोय सेवक मन सापूरी सेवक की मन सापूरी भय सतगुरु ते निर्मल मुतलाई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काल मुख जन पै जन्म मरण दुख प्रंगय इच पुनि सरदा सा पूरी रव रहा सा संघ जुरी जिसका सतन लिया मिलाए नाम भक्ति नाम सुमाए सो को श्रेय घर न पाने सो को श्रेय किया जाने सो के श्रेय सब कुछ दिया सो को श्रेय जीवन जिया सो को श्रेय जगन मिला के गुरु प्रसाद को लला के सो को श्रेय भक्ति काटे जन्म जन्म का टूटा गाडे गुरु पुरे ताते बुझाए आ प्रभु अपना नाम गंदे साजन संत करो ए काम यान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आप जपो हर नाम जपाओ भगत पाए त्रे संसार बिन भक्ति जनो सीसार सर्व कल्याण सुगुण नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सकल दुख आलत नाश नानक नाम गुणदास उपजी प्रीत प्रेम राचा मंत्र अंतर हि सुहाव नेत्रो बेग दर्शुक होए मन विकसे साचरण तो हे भगत जन के मंत्र रंग बिरला कहू पावे संग एक वस्ति जे कर्म है गुरु प्रसाद नाम जपलया ताकि उमा कही न जाए नानक रहा सब समाए प्रभ अक्षण दीन दयाल भगत फसल सदा कृपाल और नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व प्राकृत प्रताल याद करो कर्म करताल भगत जन के प्राण धार जो जिस बैसो पुनीत भगत पाए लाभ मनहीत हम निर्गुण यार नीचा जान नानक तुमरी शरण प्रभु भगवान सर्व वैकुंठ मुकुट मुख पाए नम करके गुण गायन कलाज प्रभु आई यार के नाम की कथा मन भाए वो भोजन का प्रसंगीत रसन जब ते हरा नीत भोजन भली सुकरणी सुभतन मंदिर दिवस प्रमुख मन सात संग प्रभु दे निवास सर्व सुख नानक प्रभा सलोक

जब आकार क्षणांत श्रेता पाप तब कहते होता जब थारी अपन सुन समाता बैर ब्रो के संख जब उसका वर्ण चे न जावता फर्क सौको से जावत जावे अपने आप आर ब्रह्मता मोक तो परम आपन केलिया वृति आपन केलिया वृति जय नान करणे हरण दूज जा हो ब्रह केवल निदा बंद मुक्त को किसको गुण जावे कर गो पर तर नर सुर को कौन तर जन रुण ब्रो सह सवाय तब शिव सकत कहो कित ठाए जावे आप आप अपनी जो धरे का कम नर कौन कत डरे अपन चल तब करण यार नाम था कर गो बार गुना शिव को अपने असंता जन्म मरण को का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास को किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किस पुछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुटे कौन बंधन वादे अपने आप आप ही चढ़ जा नान के आप अनु पाप ही फर जा निर्मल पुर पुर कतोता तब मैल कहो कह तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कोणो मान जय स्वरूप केवल जगदीश कह छल जगत कह की जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय कुछ भूकम त्रुतावे करण करावण करण यार नान करते कहने समर्थ अपनी शोभा अपन संग मनाई तक कौन माए बाप मित्र सुधवाए जय सर्वकला पे प्रवीणता भेद केव कह को चीन जावे अपने आप अवतारे तो सगन सगन काम विचार जय अपन ऊच अपने अमनेरा तक ठाकुर कुण कही है चेरा बिस्मन बिस्मर बिस्मार नानक अपनी कर जानवा जय सल भेषमाव तुमाया पुसको पै दे तय गुण का नाई प्रवे जय कह कह भगवंता तय कौन अचिंत चलागे चिंता जय अपने आप आप दियारा तय कौन कथे कुण सुन यारा बहु बिंदु ऊचा नानका पुसको पे पहुंचा जा प्रच प्रपंचकार तय गुण मैं किनो विस्तार पाप हंता पै कहावत को नर को सुरु मुसावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह भरम पै भार दुख सुख मान पान प्रकार की वखयान आपन खेल आप कर देख आज खेल संकोच तो नानक कह जब भगत आप जय पसरे पासार सुंदर दा दो पा कह पै धन की शोभा हूं बने आपै कहो दिग्रहण चो जा फेरा सोग निर्जोग जिस पावत आपने लावे जिस पावत खेल खिलावे बेशमार थागण ते तो लै ज्यो बुलाओ त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुर आया पे वर्तन हार नानके को बसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात इस भाव त्रिष्ट उपाय अपने भाने लै समाए तुम ते बिन एक सोए अपन सुसवे जाको प्रभु जी आप जाए सत नाम सोई निभाए सुसमदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रिष्ट का जेता जी जंत्र सब ता के आ दीन जाल नाथ को ना जिस राखे तिस कोय न मारे सोम असम सारे तिस तयो जाए सब श्री निरंजन राज जे के जुग जाके सवा अंतर बार जनु सात गुण दान बिंद पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूरे दया सब प्रोत कृपाल अपने करत जाने आप अंतर जामी रो ब्या परत पाले जिन बो भा जो जो रच सुत सत्या जिस भाव तिले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए माने अंतर विश्वास कर मान्या करण हर नानक जन लागर के ना तिसकी आसन विरथ जाए सेवक सेव अपने आई हुकुम बुझ परम बुध पाए इसते उर नहीं विचार जा के मृत से निंकार बंधन तोर पे निर्वाय रंधन पूजे गुरु के पैर लोक सुखे प्रलोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मिले सासंग मिल करो नंद गुण गा पर आनंद राम नाम तद करो विजा दृढ़ उदय का करो उधार अमृत वचन हर के गुण गा प्रांतरण गाय सुहाट पैर पर विखण मिटे ज्ञान मिल से अंधेरा मन से नानक कुल पाव हृदय सुनो विजय हृदय विसाव मन छे नाम को पाव हल पल तो लो सुहा राम नंत्र उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन सचिता सास प्रीख्या मनता नाम चोली उलाए दुख दर्द मन तय हो जाए सच व्यवहार करो बारी दर कहने वह के तुम्हारी काटे रखो मन माए नानक बहुन आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए गुरु रखन हारते आए निर्भव जपै सकल भव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे जिस पर आगे दिनाए दुख नाम जो मन हो सुख चिंता जाय मिटे अंकार ते जन को कोई न पहुंच नार श्री रूप ठाडा गुरु सूरा नानक दा के कारज पूरा मतपुरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पे दृष्ट चरण कमल जाके अनु सफल दर्शन सुंदर हारू धन सेवा सेव कुरान अंतर जमी प्रोफरदान जिस मन वसे सोहत निहाल ता के निकनावत काल अमर भय अमरा पद पाए सासंग नानक कर तय सलो ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संगंत्र प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री कस कटमायन ग्रंग नान दुस्ताय नौन प्रभु का नौन देवल प्रभु का नाम दे ही मैं विश्राम सुन समाधन तय नाथ कह न जय चरण समाध इंदे कह श्याप दिखाए नानक तीन आप जाए सर्वभूत अवतार सर्वने न पिकनार
ਤਿੰਦਿਕ ਸਿਆਪ ਜਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਸੁੰਦਰ ਸੋ ਬਾਹਰਣੰਤ ਘੜਘੜ ਪਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਭਗਵੰਤ ਧਰਨਮੈ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆ ਸਰਲੂਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਣ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰਮ ਜੈਸੀ ਆਗਾ ਤੈ ਸਕਰਮ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸਮ ਧਰਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦੈ ਸਮਾਏ ਤਿਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਸੋ ਪਾਓ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਿਰ ਸੁਣ ਕਤਰਮਾਏ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਹੂੰ ਡੋਲੈ